कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: ए हेर्नुहोस् त, यो समाचार त कस्तो असम्भवको छ, सेयर गरिदिउँ कि क्या हो?
1: पक्नुहोस् नानी, जे पाए त्यही कुरा सकिँदैन, पहिले स्रोत जाँचौ अनि मात्र विश्वास गरौं।
2: सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रामक र मिथ्या सूचनाले समाजमा अस्थिरता निम्त्याउँछ। कुनै पनि कुरा सेयर गर्नु अघि त्यसको आधिकारिकता पुष्टि गरौं, अफवाह नफैलाऊ, सत्य जाँचौ, भ्रमबाट बचौं, जिम्मेवार संचार संस्कृति अपनाऊ।
0: अनुरोध, गण्डकी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, प्रेस रजिस्ट्रारको कार्यालय, गण्डकी प्रदेश, पोखरा।
3: प्रमोशन लेटर,
4: कंग्रेचुलेशंस।
3: थैंक यू।
4: वाओ
3: बेबी, बैंगलोर।
4: आई होप यू सेड नो।
3: नो, मैं नो क्यों बोलूंगी?
4: हाँ, मेरा क्या होगा, एज इन हमारा क्या होगा?
3: बाबा, तुम्हारे हमारे की बात नहीं है, तुम्हें पता तो है ये प्रमोशन मुझे कितनी मुश्किल से मिली है। आई हैव टू गो टू बैंगलोर।
4: अगर तुमने डिसाइड कर लिया तो तुम मुझसे पूछने क्यों आई?
3: हेलो, मैं पूछने नहीं आई, मैं बताने आई। आई डोंट हैव टू आस्क यू एनीथिंग और मैं जा रही हूँ बैंगलोर। व्हाटएवर,
4: बेबी
3: डोंट टॉक टू मी।

मौसम अदाए ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तू कितना ब्लडी फुल है।

ब्यूटीफुल जानती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़ी फूल है जानती हूँ मैं तुझे तो कितना बड़ी फूल है।

मौसम अदाएं ब्यूटीफुल है, जानती हूँ मैं तुझे तू कितना ब्लडी फुल है।

0: दुलेगौड़ा भित्री बजार हेल्थ पोस्ट चोक
1: प्रोप्राइटर ऋषिराम पौडेल ऋतु लम्साल पौडेल मोबाइल 9098526463 र 9847739849